0: आमाको वेरी सिक त्रारे गाउँ वेरी जरुरी उनी सब टेकर वाकियो ओरा
1: यसिस
0: सब टेकर वाकियो दिस इज सी डोंट
2: ओ तो हो ओ तो हाइरा थाइट तक लाउ